गुरु रूप साध सिंह जी कीर्तन की समाप्ति है। होइया भुला चुका की खिमा बख्शिश करनी जी, सब संगत का, बच्चों का, सब का बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़ी सोहनी संगत साड़ना की है। इतनी छोटी उम्र के सतगुरों ने इन्हों बहुत वाला गुण बख्शिश किया है। बड़े बड़े राग बजाते हैं और इन्होंने असी अरदास करते हैं कि गुरु महाराज होर इन्हों तरक्की बख्शिश करे, ता जो इस तरह खलकत दी और कौम दी पंथ दी ये सेवा कर सका।

वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप संगतां ने शाम दे दवान विच हाजरी भर के गुरबाणी कथा कीर्तन दे लाहे प्राप्त कीते हन। सतगुरु साहिब जी रहमत करन, सबनी दर हाजरी प्रवान करन, दरो करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शन जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कृपय सहाई श्लोक। जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हाउ नाथ न छुटै निकट ना जाइहो दूत।

मांगा मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद

महादेव वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कार नाव निधे आवे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

प्रभु के सिमरण गर्व ना बसै प्रभु के सिमरण दुख जम न सै प्रभु के सिमरण काल पर हरै प्रभु के सिमरण दुष्मन टराय प्रभु सिमरण

चला है। जय मुस्को लो वे अत पारी हर को नाम खिनवाय उदारी अनक पुनचन करत नहीं ताराय हर को नाम कोड़ पाप पर हराय गुरमुख।

जय प्रसाद छति अमृत खाए तुचाकर को राख मान माए जय प्रसाद सुगंधन तन लावे तिसको सिमर परम गत पावे जय प्रसाद बसा सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमर तुस रसना जय प्रसाद।

जय प्रसाद तर स्वगल छिद्र ठाके मन सर ने पर ठाकर प्रवता कह जय प्रसाद तुझ को ना पहुचे मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे जय प्रसाद भाई दुर्लभ दे हो नाने ता की भगत करे हो जय प्रसाद भूखन पैरी जय मर्त सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद।

साधक संघ मुख्य जल होत सा संघ मल सगली खो साग संघ मिट अभिमान साग संघ प्रकट सो ज्ञान साग संघ बुझे प्रभ नेरा सा संघ सब होत मेरा साग संघ पाए नाम रतन साग संघे को पर जतन साधक महिमा बन कौन पराने नानक साग शोभा ब्रह्म समाने साग संघ गोचर मिले साग संघ सदा पर

ब्रह्मज्ञानी कह गृह विश्व महा ब्रह्मज्ञानी परोपकारो महा ब्रह्मज्ञानी कहना ही तंदा ब्रह्मज्ञानी लता बंदा ब्रह्मज्ञानी कहो सोपला ब्रह्मज्ञानी सुफल पला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदार नानी ब्रह्मज्ञानी जप सगल संसार ब्रह्मज्ञानी कह के रंग ब्रह्मज्ञानी कह उसे प्रभसंग ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार ब्रह्मज्ञानी सदा सजागत ब्रह्मज्ञानी अवंते आगत ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी

मंत्रेन्द्र सिमरन गोपाल सभी परोवर कृपाल आप दृढ़ नाम आप दृढ़ नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे।

कबू आप के रथ में आवे कबू पला पला का आवे जो प्रभु राखे तभी रहे गुरु प्रसाद नानक सा चुका है।

चरण जल मार गोविंद मिट है पाप जपियर बिंद कर हर कर्म सर्वनार कथा दरगा नानक उज्जल मथा बड़ भागे ते जन जग माए सदा सदार के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से तन मंद गनी संसार मन तन मुख बोले।

अपना दिन जन दय जैन जन अपना प्रभु छाता सो जन सर्व का दाता तिथिका शरण सर्व सुख पावे तिथिका धर सब पा मिटाव है।

श्लोक सात पुरुख जिन जाने सदगुरु तिसका नाऊ तिसके संग सिखियो दुराए नानक हर गुण गावस्पदी। सतगुरु सिख की करे।

के कारदरास सेवा करतो है न कामे तिसको प्राप स्वामी अपनी कृपा जिसाप करे नानक सो सेवा गुर की मातले बीस विश्व गुर का बनवान सो से ऊपर मित्र की कत जाने सो सतगुरु दूसरे देर नाम कुमार गुर को बल जाओ

ना जाइए हे नानक सगुरुड़ भागी पाइये सफल दर्शन पे कृपा ने पारसत चरण के निर्मल रेत भेटत संग राम गुण रवै पार ब्रह्म की दरगाह गवै सुन कर वचन करना।

मिलाए जे वाहे कौसता नेक सदपुर पूर्ण बाबे काहू बोल न पहुंच प्राणी अगम गोत्र पर निर्वाणी निराह निर्वार सुखदाई तां की कीमत कर न पाई अनेक भगत बंधन निध कर चरण कमल हृदय सिमराय साद भले हरि सदगुरु अपने नानक जस प्रसाद ऐसा प्रभु अपने एहो रस पावे दिन कोई अमृत पीवे अमृत सो हो आए उस पुरख ना ही कदे विनाश हो जा के मन भगता गुंता सो आठ पैर हर का नाम ले सच उपदे सेवको दे

अपने तो प्रभाव बनाए अपने कीमत आपे पाए अरबंदू जाना ही को सर्व निरंतर को सोए और

राज रंगमाया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार आसस्ती रथस्वारी चुटम चूट पास सारी जिन दियत बुजना बिगाना ना विसार नानक पताना गुर की मतो ले याने भगत बिना बो डूबे सियाने हर के बद करो मन मीन निर्मल हो तुम्हारो चेत चरण कमर राखो मन माए जन्म जन्म के कृप गदाए आव जपो अवर नाम जपाओ सुनत कैद रहत कर पाओ सार पो सतर को नाम सह सुभाय नानक गुण गाओ गुण गावत रे उत्तर संभाल बिन जाए होमे भी पैल होए चंद बस सुगनाल सास ग्रास हर नाम समाल चाड़ सनम सगली मना सासंग पावे सच तना हर पुंजी संज करो बिहार यहाँ सुधर गया जयकार सरमंदर अंतर एको देखो नाने जाके मिल सगले के को जपे को सला एक सिमर एको मना एक गुण गावे नंद मंथन जापे एक भगवान एको एक एक हरा पूर्ण पूरे प्रभ्यापन के विचार एक तय एक रात प्राचुर गए मंत्र एक प्रभ राजा गुरु प्रचार नानक जाता श्लोक फेरत

अब चरण कमल सोला गया प्रीत भगत गुरु प्रभु की नित नीत एको टेको आधार नानक मंगे नाम प्रभु सार प्रभु के दृष्ट मास खोए रथ पावे बिरला कोय जिन चाक्या से जिन तृप्ता ने पूर्ण पुरख ने डोलान सो पर परे प्रेम रस रंग उपज चाव साध कै संग पर सुरनान सब त्याग अंतर प्रकाशन निविलाग बड़ भाग जपया प्रभ सोय नानक नाम रस सुखोय सेव की मन

तुम्हरे शरण प्रभु भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक नाम करके गुण गाए अनुग्रह भोग बढ़ाए के नाम की कथा मन पाए वो भोजन का प्रसंगित रसना जपति हर हर नीत पाले सो करने सो बाथन मंत हृदय से पूर्ण गुरु मंत्र।

जब इसका भरण चेना जब तो तब हर किसे व्यापत तब आपन आप अपार ब्रह्म तब मोह का होवत परम।

कौन बंधन बाधे आपन पाप या चरदा नानक आपन रो पाप यो पर जा जय निर्मल पुरग पुरग पत होता दैव मैल कहो क्या तोता जय निरंजन रंका निर्वाणता कौन कौमान कौन अभिमान

जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिबतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होहे ता इक न चलै नाल केव सचियार होइए केव कूड़ै तुटै पाल

ओंकार असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तापता असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार।

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल पख खाहे।

अमोल भंडार अमोल आव है अमोल लै जाहे अमोल पाए अमोला समाहे अमोल धर्म अमोल दीवान अमोल तुल अमोल परवान।

परम सिद्धे नमो राजवृजे सुरंग परम भृदे नमो सहस्त्रपाने नमो वस्त्रमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय पर

दान चलेंगे। वीर पार बड़े बड़े आर विचार हिसार की धार पिसैया तोर देश मरेंद मुआसन माध के जान के माल मलैया।

0: पहला पानी जियो जे धरिया सब कोए सुद क्यों कर किए सुदक पवे रसो नानक सूद को नाम सो नानक सूद के बना उतरे ज्ञान उतारे तुए महला पहला
1: मन का सुत लोभ है जेवा सुत कूड़ की सुतक वेखना।

0: मने सुरत होवे मन बुद्ध
1: मनै सगल भवन की सुध
0: मने मोह छोटा न खाए
1: मनै जमकै साथ न जाए
0: ऐसा नाम निरंजन होए
1: जेको मन जाने मन कोए
0: मने मार्ग ठाक न पाए
1: मने पद से प्रगट जाए
0: मनै मग न चले पंथ
1: मनै धर्म से ती संबंध
0: ऐसा नाम निरंजन होए
1: जेको मन जाने मन कोए
0: मने मार्ग ठाक न मने पावे मोक द्वार
1: मन्ने परवार है साधार
0: मन्ने तरे तारे गुरसिख
1: मन्ना

0: अगम अगम असंख लो
1: सिर पार हो
0: अखरी नाम अखरी साला
1: अखरी ज्ञान गीत गुण गा
0: अखरी लेखन बोलन बाण
1: अखरा सिर संजोग
0: जिन एह लेख्या ते सिर नाहे
1: फरमाए तिप तिप पाए
0: जेता कीता तेता नाव
1: नावे नाही कोथा
0: कुदरत कवन कहां विचार
1: हर न जावा एक बार
0: जो तत भावे साई भली कार
1: सदा सलामत निरंकार
0: भरिया हाथ पैर तन दे
1: पानी तोते उतर सोखे
0: मूत पलीते कपड़ होए
1: दे साबुन लईए ओ तोए
0: भरिया मत पा पा के संग
1: तोपे नावे के रंग
0: पापी आखण नाहे
1: कर कर करना लिख ला जाओ
0: आपे बीजा पे ही खाओ
1: नानक हुक्मी आवो जाओ
0: तीर्थ तप दया दत्त दान
1: देखो पावे तिल का मान
0: सुनया मन्या मन कीता पाओ
1: अंतर्गत तीर्थ मलना
0: सब गुण तेरे मैं नाही कोए
1: गुण कीते भगत होए
0: स्वस्थ आत बाणी बरमाओ
1: सत सहान सदा मन चाओ
0: कवन सवेला वक्त कवन कवन थेत कवन वार
1: सेती माह कवन जित हो आकार
0: वेल ना पाइया पंडती जे होवे लेख प्राण
1: लिखे हो
0: नानक वड्डा आखिया आपै जाना आप
1: सालाही साला एती सुध न पाया
0: नदियों अते वाह पवे समुंद न जानी है
1: समुंद सा सुल्तान गिरह सेती मालता
0: कीड़ी तुल न होवनी जित समन हो न विसर है
1: अंत न सिफती कह न अंत
0: अंत न करना देन न अंत
1: अंत न वेखण सुन न अंत
0: अंत न जापे क्या मन मंत
1: अंत न जापे कीता आकार
0: अंत न जापे पारावार
1: अंत कारण केते बिन लाहे
0: ताके अंत न पाए जाहे
1: अंत न जाने कोय
0: बहुता कहिए बहुता होए
1: बड़ा साहेब ऊंचा था
0: ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ
1: केवड़ ऊंचा हो वह कोय
0: ते सूचे को

0: सेवक सिख्य मारे सबे करता रहा
1: बोला चाले करते करिए सब रण को आज करिए
0: तो

0: सकल मलेश करो रण काता
1: जीत सनी परे तन के दोष त दुख होए मरे
2: जवन पाक परे तैयार है तुम के तुम संकट सब तारे।

0: फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे बच्चे ने देख आके मत्था टेक के तुसी लंगर हाल जाके, एंड देन मेक श्योर आई वांट टू सी एवरीबॉडी इन क्लास राम ना बैठ के, ठीक है? मैं थानू कल की क्या, यू गाइस मिस पीएफ कैंडी नहीं मिलना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सो तुसी हुणे देख छक के गन को लंगर हाल। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निम्क निम्क तुम ही प्रतपालो हम मार्ग तुमरे तारे तुमरी शरण तुम्हारी आस तुम ही सजन सुहिले राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले सज्जन सच्चा पात साहु सिरसा दे साहू जिस पास बैठे सोही है

जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सह सु सियाणपा लख हो है ता एक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल हुकमर जाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी होवन जिया हुक्म लै वड्याई हुक्मी उत्तम नीचा हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बगसीसा एक हुक्मी सदा पवाई है।

नहाए करी जे तीसर ठ्यो पाई वेखा बिन करमा के मिले लई मत विच रतन जो आहर मानक जेक गुर की सिख सुनी गुराइक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा उर्द सुनी होए नवा खंडा विच जानी आए नाल चलै सब कोए चंगा ना उर खाए कै जस कीर्त जागले जे तिस नदर न आवई तां वात न पुछे के कीटा अंदर कीटकार दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे तिहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोय करै सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तबले आकास सुनया दीपलो पाताल सुनया पोए न सके काल नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया ईसर ब्रह्मा इंद सुनया मुख सलाहन मंद सुनया जुग जुगत तन भेद सुनया सासत सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सतसंतोख ज्ञान सुनया अड़सठ का सुनान सुनया पढ़ पढ़ पावे मान सुनया लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावे राह सुनया हाथ वे सगाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास मने की गत कही ना जाए जे को कह पिछे पछताए कागद कलम ना लिखन हार मने काबे करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मनाए सुरत व्या मन बोधा मनाए सगल भवन की सोधा मनाए मोह चोटा ना खाए मनाए जम कहे साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनाए मार्ग ठाक न पाए मनाए पद स्यों प्रगट जाए मनाए मग न चले पंथ मनाए धर्म से ती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनाए पावे मुख द्वार मनाए परवारे साधार मनाए तरे तारे गुर सिख मनाए नानक भवे ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान पंचे सुहे दर राजान पंचा का गुरु ध्यान

सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर विखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथिता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार विखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार।

तप तप जपे बेअंता तेरे अनेक बड़े व सिमरत सा सुत जी कर क्रिया खट कर्म करंता उसे भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे अर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुर जेवड़े अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुद आपे सृट सब उपाई जी तुद आपे सरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे खा जन होई आसा महला चौथा

मूर्ख मुहदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया सा महला पंजवा, पई पुरापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संग

हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शर्मा। सोला राग गौड़ी देव की महला पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद जय घर कीरत आखी है करते का हो विचारो तेत घर गावो सोहिला सिमरो सृजनहार।

तिथे होए सच्चा निशान रहाउ। जिथे मिले वडियाइया सद खुशियां सद चाओ, तिन मुख टिके निकल जिन मन सच्चा नाओ। कर्म मिले ता पाइए नाही गली वाओ दुआओ, एक आवे एक जाए उठ रखिए नाव सलार। एक उपाय मंगते एक ना वड्डे दरबार, अगे गया जानिए विरनावे वेकार। पै तिरे डर अगला खप।

जाय पुछो सुहागनी तुसी रावे आ किन्नी गुणी सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी पेरा रिसालू ता मिले जां गुर का शब्द सुनी।

जग सुपना बाजी बनी खिन मैं खेल खिलाए संजोगी मिले कसे वे जोगी उठ जाए जो तिस पाना सोथी है अवर न करना जाए गुरमुख वस्त वेसाही है सच वखर सच रास जिनी सच वणजिया गुरपुरे साबास नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास श्री राग महल पहला तात मिले फुन तात को सिपती सिपत समाए लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोखिया सच मिले संतोखिया हर जप एक है पाहे भाई रे संत जना की रे न संत सभा गुर पाइए।

जब लग शब्द ना भेदिया क्यों सोहै गुरुद्वार नानक तन सुहागनी जिस जिन सह नाल प्यार श्री राग महला पहला

दुख भरे बिनसे दूजे भाए मूड़े राम जपो गुण सार होमे ममता मोहनी सब मुठी हंकार राव जिनी नाम वसारिया दूजी कारे लग दुबदा लागे पच मुए अंतर तृष्णा अग गुर राखे से उबरे होर मुठी तंदे ठग मुई प्रीत प्यार गया मुआ वैर विरोध धंधा थका हो मुई ममता माया क्रोध कर मिले सच पाइए गुरमुख सदा निरोध सची कारे सच मिले गुरमत पल्ले पाए सो नर जम्मे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दरगे पैदा जाए श्री राग महल पहला।

हमर रत से निर्मलय गुर कै सहज सुपाए मन तन रता रंग सिंह रसना रसन रसाय नानक रंग ना उतरे जो हर तुर छोड़िया लाए श्री राग महला तीजा गुरमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होई आपै आप मिलाए बुझै तन निर्मल हो वै सोई हर जो साचा साची बाणी सबने मिलावा हुई पाई।